शक संवत 1948 की आश्विन माह की 14वीं तिथि तदनुसार 6 अक्टूबर सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। श्रोताओं, अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला

0: ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदनवार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आप किसी संकट का ध्यान से विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि वो या तो आगे बढ़ने का अवसर है या वो वही रुक जाने की चेतावनी है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 333। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए श्रृंखला का भाग 6। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका है ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भोले बिसरे गीत। सात बजकर 30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। अभिनेता है विनोद खन्ना। आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे सेहतनामा में पीसीओडी आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 से सजेगी यादों की महफिल, 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। दो 2:30 पर सदा बहार नगमे, 3 बजे सुनिए सखी सहेली। शाम 4 पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका वजन घटाओ, लेखन है वीएम आनंद का, निर्देशन है कमल दत्त का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक और 9 आपके लिए।

10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अपनी चतुरंगिणी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है, पवन जैसे ठहर गया है।

पृथ्वी आतंकित है, दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीछ योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिराती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्रीराम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं, युद्ध में विजय सदा धर्मरथ की होती है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुते होते हैं।

महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि जय राम रावण मत्त गज मृग राज सुजसु बखान।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज सुनते हैं छठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला है संगीत सरिता की इन कड़ियों में, और जो उन वो ज्ञान के मोती हमें दे रहे हैं, हम भी अपने को समृद्ध कर रहे हैं और उम्मीद है

0: कि हमारे श्रोता भी समृद्ध हो रहे हैं। आज केएल सहगल के बारे में वो जानकारी देंगे।
1: कुंदन लाल सहगल जी की कुछ रचनाओं को मैं सुनवाना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं, चूंकि बात हो रही है भक्ति रस की
0: जी,
1: तो एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत अद्भुत आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब कि जो कबीर साहब ने लिखा था
0: जी,
1: वो आपको कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, कहीं बंगाल में वही भाव आपको मिल जाएगा। या मीराबाई ने अगर कुछ लिखा था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं उसमें से एक भी भजन मीराबाई का नहीं है, यानी कि उनकी भाषा में नहीं है। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। तो हमारे यहाँ साधुओं की एक भाषा होती थी, जो साधु बन जाते थे उनकी आपस में बातचीत करने की जो भाषा होती थी उसको हम सधुखड़ी बोलते थे।
0: जी, जी।
1: जो हम बहुत ही अच्छी भाषा हिंदी में बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ी, मेवाड़ की भाषा में थे।
0: जी।
1: अब मेवाड़ी भाषा को समझना आसान नहीं था, तो उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने वियोगी हरि नाम के, जो बाद में एक बहुत बड़े कवि बने, वियोगी हरि जी को, जो बिल्कुल तरुण थे उस समय, उनको दायित्व दिया कि भाई तुम इस इन सारे मीराबाई के भजनों का सरलीकरण करके मुझे दो, ताकि मैं ये प्रकाशित करूं तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा।
0: जी जी।
1: क्यों, गीता प्रेस से उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो भाव तो सब समझ लिया है पर इसकी भाषा क्या हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या। बोले मेरे हिसाब से इसको कबीर की भाषा में करते हैं। बोले अच्छा, ये कौन सी भाषा है? तो बोले कबीर की जो अधिकांश भजन है वो सधुखड़ी भाषा में।
0: जी जी।
1: तो अब आपको मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि कबीर का जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब ये भोजपुरी नहीं है, ये सधुखड़ी भाषा है। तो वियोगी हरि जी ने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: जी।
1: तो ये इस तरह का हमारे यहाँ बहुत सारा प्रयोग हुआ कि भाव की यात्रा हुई।
0: जी जी।
1: शब्द कहीं पीछे छूट गए। और वैसे भी हमारे यहाँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है भाव, कि आपके भाव कैसे हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, यद्यपि मैं स्वयं भी गाता हूँ, हम सब गाते हैं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।
0: जी जी।
1: जिन कवियों का पूरा आपको संग्रह मिलता है उसमें से एक कवि का नाम है तुलसीदास, जिनका लिखा हुआ आपको रामचरितमानस मिलता है, फिर बहुत सारी उनकी रचनाएं,
0: रामायण है और मतलब रामायण अलग सरलीकरण करके,
1: हाँ तो वो सब है, लेकिन कहीं भी आपको ठुमकी चलत रामचंद्र नहीं मिलता है। ऐसे ही कबीर के भी बहुत सारे भजन हैं जो आपको कबीर के बीजक में या कबीर की पुस्तकों में या गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलते हैं, पर वो जनमानस में लोकप्रिय है। तो इसका एक कारण ये था कि उस समय जो भी लोग थे उनका कहना था कि ये भाव तो पहुंच जाए।
0: जी, हाँ।
1: ये भाव चला जाए, अच्छी बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए।
0: जी,
1: तो उस तरह से इसलिए जब फिल्में बननी शुरू हुई तो उस समय इस तरह के भी प्रयोग हुए कि कुछ तो उन्होंने ओरिजिनल जो भजन थे वो ले लिए। अभी जो आप आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी की हम रचना आपको सुनाने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम था भक्त सूरदास।
0: जी जी।
1: श्री डी एन मधोक एक बहुत अच्छे कवि थे, उनके शब्द हैं।
0: शिखर दादा, हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि उस दौर में जब कुंदन लाल सहगल गा रहे थे तो उस समय बहुत सारे दिग्गज कालजयी कलाकार थे, कानन देवी थी, खुर्शीद और पंकज मलिक, तो ये एक दौर था, एक पाठशाला थी इन गायकों की, तो उस दौर की जो गायन परंपरा थी उसकी कुछ विशेषता अलग से थी, ये कुछ बताएंगे इस बारे में?
1: सबसे पहले तो एक बांग्ला का प्रभाव था, मैंने 1930 से लेकर के 1945-46 तक के गानों में
0: जी।
1: आपको बंगाल का एक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि आरसी बोराल और पंकज मलिक, स्पेशली पंकज मलिक जी, और बाद में वो कंटिन्यू हुआ यहाँ पर, जब बंगाल में आए तो सचिन देव बर्मन
0: जी, जी।
1: फिर आपके सलील चौधरी और इस तरह के सारे, और सिंगर्स भी आए, हेमंत कुमार जी,
0: जी।
1: तो एक बंगाल का वो एक प्रभाव रहा, पर उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें पंजाब का भी अंश मिलने लगा, पंजाब के भी बड़े अच्छे अच्छे संगीत

0: थे। महाराष्ट्र तो भक्ति की धरती थी
1: जी जी।
0: जिस शहर में मैं इस समय रहता हूँ पुणे, उसको पुण्य नगरी कहा जाता था
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: सारे संतों की भूमि थी वो। तो ऐसी बहुत विशेषताएं यहाँ पर जुड़ती गईं। और कभी भी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी भी चीज में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संतों को लेके लड़ाई नहीं है
1: जी।
0: आप समझ रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: अगर विवेकानंद आते हैं तो कोई ये नहीं कहता अरे ये तो बंगाली हैं भाई, हम इनका काहे को सुने हम कोई
1: जी,
0: आप
1: जी।
0: देखेंगे उनके ऊपर कोई कार्यक्रम होगा तो तमिलनाडु के भी लोग आ रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और पंजाब का भी व्यक्ति आ रहा है कबीर सुनने के लिए, उड़ीसा का भी व्यक्ति देख रहा है। तो हमारे यहाँ ये बहुत उदारता रही हमारे संत वाणी की कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ कर रखा। कुंदन लाल सहगल जी एक विशेष गायक थे। आज के श्रोताओं को शायद अनुमान नहीं होगा लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी यानी मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ
1: जी।
0: और हमारे दादाजी के कालखंड में जो सुपरस्टार हुआ करते थे उनका नाम था K.L. सहगल।
1: बिल्कुल।
0: और लोग पागल थे उनके, और ऐसी उनकी अद्भुत आवाज थी कि वो उनकी जैसी आवाज केवल उनकी ही थी। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब मधुकर श्याम हमारे चोर सूरदास जी के शब्द हैं, आप लोग इसका आनंद लें।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये रचना।

0: आपने अभी ये रचना सुनी आदरणीय कुंदन लाल सहगल जी के स्वरों में, मधुकर श्याम हमारे चोर। सहगल जी उन गायकों में से हैं जिन्होंने कलकत्ते में भी भरपूर काम किया और फिर मुंबई आकर के यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुंबई में वो रहते थे माटुंगा में, हमारे सेवन गार्डन्स के पास उनका बंगला था। और मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे पता नहीं था कि वो कभी कहाँ रहते हैं, तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं उस गली में गया, मैंने कहा सहगल साहब कहाँ रहते थे, बोले यहाँ रहते थे। तो मैं बाहर जाकर उस मकान को प्रणाम करके आया,
1: क्या बात,
0: वहाँ की धूल। क्योंकि ये सब वो गायक हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को सींचा है
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि एक और रचना हम सहगल साहब के स्वरों में सुने और आज के इस शताब्दी की भक्ति रस में ये एक रस का एक बूंद, रस की एक बूंद हम लोग जरूर उसको ग्रहण करें। कहूं क्या आस निराश भई।

0: आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में अगली कड़ी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इस श्रृंखला की आज आपने छठवीं कड़ी सुनी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सिंह, तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

सुनहरे सूरज की सुनहरी किरणें, सुनहरी किरणों का सुनहरा दिन, सुनहरे दिन की सुनहरी शुरुआत, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे लोगों के साथ प्यारा सा दिन, प्यारा सा सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार अलवर को लेकर मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, आपकी दोस्त हेमलता धनराज और आप सभी को हमारा प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। साथ ही हमारे तमाम श्रोताओं का करते हैं कार्यक्रम में

हार्दिक अभिनंदन। तो लीजिए श्रोताओ, एक फिर नई सुबह, नई सुबह का नया दिन, नए दिन का नया सूरज लेकर आया है आपके लिए कुछ खास पैगाम। श्रोताओ, रोज आपसे बातें करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए विषयों पर, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है। और कहते हैं ना कि वैसे तो समय वक्त मिलता नहीं है हमें किसी बात पर चिंतन करने का, लेकिन हो सकता है हमारी ये एक कोशिश, हमारा एक प्रयास कार्यक्रम नमस्कार अलवर के माध्यम से आप तक सार्थक हो जाए और आप उस बात पर चिंतन करने लगे। तो कुछ ऐसा ही आज का विषय हम चुनकर लाए हैं। जी हाँ, स्वच्छता परमो धर्म। इसका अर्थ आप खुद ही जान गए होंगे कि साफ सफाई या स्वच्छता ही इंसान का सबसे बड़ा और उत्तम धर्म है और होना भी चाहिए। श्रोताओ, मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि कुछ कहते हैं कि एक मोटे शब्दों में देखा जाए तो हमें स्वच्छता का महत्व तो जानना ही है। तो अब आपके मस्तिष्क में बात तो बैठ ही गई कि आज हम बात करेंगे स्वच्छता परमो धर्म पर। फिलहाल करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस मधुर से गीत के साथ।

श्रोतो, हम आज बात कर रहे हैं स्वच्छता परमो धर्म पर। जी हाँ, स्वच्छता का महत्व जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है शारीरिक स्वास्थ्य। साफ सुथरा वातावरण और शरीर कई बीमारियों से बचाता है, क्योंकि जब तक हम शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, अपने वातावरण पर ध्यान नहीं देंगे, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसके साथ आप देखिए, मानसिक शांति, स्वच्छ और व्यवस्थित जगह रहने पर व्यक्ति का मन शांत होता है और उसके विचार सकारात्मक रहते हैं। इसके साथ ही सामाजिक प्रगति भी होती है स्वच्छ वातावरण से, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ

समाज ही किसी देश या राष्ट्र की उन्नति का आधार बनता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। भारतीय संस्कृति और धर्म में भी बाहरी साफ सफाई के साथ आंतरिक शुद्धता को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है। इसलिए श्रोताओं, हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है।

श्रोताओं, स्वच्छता परम धर्म है। किसी समूह, जाति, समाज, धर्म और राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वच्छता सबसे अहम तत्व है। ये एक मौलिक कला है। वैसे भी मनुष्य में स्वाभाविक सौंदर्य वृत्ति होती है जो साफ सफाई की प्रवृत्ति को जन्म देती है और धीरे धीरे यह आदत और फिर संस्कार बन जाती है। धर्म के आईने में देखें, मंदिर की पूजा, मस्जिद में नमाज और गिरजाघर में प्रार्थना को लेकर मान्यता है कि यह तभी स्वीकार्य होती है जब ये स्थल स्वच्छ हो। परंतु ऐसे संस्कारों के बाद भी दुर्भाग्य से सफाई के मामले में भारतीय समाज का चेहरा ऐसा नहीं है और घर और पूजा स्थल पर तो साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, लेकिन धर्म स्थलों के बाहर भी आप देखिए और सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी सफाई के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं। आप देखिए, हम में से बहुसंख्यक ऐसे हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते हैं, यहाँ तक कि ऐतिहासिक महत्व की जगहों को भी गंदा करने में वो और उन पर कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते हैं। बहुत सोचनीय विषय है श्रोताओं, बातें आपसे लगातार जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये मधुर सा गीत।

श्रोताओ हम बात कर रहे हैं स्वच्छता पर। जी हाँ श्रोताओ, श्रोताओ कई बार आपने देखा होगा परिवार या दोस्तों में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि जब बच्चे जेब में टॉफी का रैपर भी रख लेते हैं लेकिन बड़े लोग सड़क पर खुलेआम थूकते हैं। हर घर में शौचालय बनवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना पड़ता है और यह हम लोगों की स्वच्छता के प्रति उदासीनता, लापरवाही, उपेक्षा को दर्शाता है। महात्मा गांधी ने हमारे इन्हीं संस्कारों को सबसे पहले बदलने का आग्रह किया था। उन्होंने आत्मा के सच को स्वीकारने की बात कही थी, जो स्वच्छता के सच का पाठ भी उन्होंने हमें पढ़ाया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति उदासीनता, लापरवाही दिखाई देते हैं। और ये कार्य इतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। बस इसके लिए हमें अपनी आदत में छोटा सा बदलाव करना होगा। गांधी जी के कथनानुसार हर व्यक्ति को गांव की स्वच्छता और सफाई के बारे में सदा जागरूक रहना होगा। यह सोचना होगा कि सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ कर्मचारियों की नहीं, हम जहां भी रहते हैं, काम कर रहे हैं, वहां साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखना होगा। अब तक जो लोग स्वच्छता के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे उन्हें ये एहसास हुआ कि गंदगी फैलाना कितना आसान है लेकिन उसे साफ करना बहुत मुश्किल। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इससे लोगों की आदतें बदल रही हैं। फिर भी अभी हमें बहुत ही बड़ी राह तय करनी है, इसलिए श्रोताओं हमें आज से ही ये तय करना है और ये संकल्प लेना है कि अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल, तीर्थ स्थल पर भी जाते हैं तो वहाँ भी आप गंदगी ना करें, और भी लोग यदि ऐसा करते हैं तो आप भी उन्हें समझाएं प्यार से कि ऐसा यहाँ करना उचित नहीं है। स्वच्छता बहुत जरूरी है, वरना हमारे ये ऐतिहासिक स्थल, तीर्थ स्थल कहते हैं कि इन पर जाने पर हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, मन की शांति मिलती है। लेकिन सोचिए जहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हो तो क्या आप जाना वहाँ पर सही समझेंगे? तो श्रोताओं बस इन्हीं बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। चलिए चलते चलते सुनवा देते हैं आपको ये एक और गीत।

तो श्रोताओ कार्यक्रम नमस्कार अलवर से आप हमें दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 7:30 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओ, इस समय आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल। सुबह की बेला में कुछ बेहतरीन नगमों के साथ आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत के कुछ मधुर तराने।

श्रोताओं को फिल्म संगीत का पहला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म कुर्बान से, आवाज अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीत की रचना समीर की, संगीत निर्देशन आनंद मिलंद का।

कुर्बान फिल्म के गीत में आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। लीजिए अब सुनते हैं जीत फिल्म का ये गीत।

जीत फिल्म के इस गीत में आपने सुना कुमार शानू और अलका याग्निक को, गीत संगीत समीर और नदीम श्रवण का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए आपको सुनवाते हैं जान फिल्म का ये गीत, आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आनंद मिलंद का।

जान, इस फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम को। गीत संगीत आनंद बख्शी और आनंद मिलंद का। श्रोता, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

चांदनी फिल्म के गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और बाबला मेहता को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन शिवहरि का। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत की ये एक और पेशकश।

मैंने प्यार किया इस फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत लिखा था अशद भोपाली ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रद्धा इसी गीत के साथ संपन्न हुआ फिल्म संगीत। आकाशवाणी अलवर का यह सरिस्का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्य

0: सभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर

0: के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर Trivandrum or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत

0: दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है।

0: बनाकर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए तो अब पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत की महफिल में आज के फनकार हैं गुलाम अली साहब।

0: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के फनकार हैं गुलाम अली साहब। कार्यक्रम का अगला गुलाम कलाम सुनने से पहले सुनते हैं ये चंद संदेश।
1: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
6: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
7: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
8: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गुलाम अली साहब को। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है, सवेरे के 8:30 बजने को है। लीजिए, आप प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
0: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
0: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर हैं लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
2: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है और उस विरासत को हम

0: नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
0: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोताओ, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था। लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी, जबकि वे जीवित थे
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
1: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ
0: जी।
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओ, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओ, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है
0: जी।
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है।
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी
1: जी।
0: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी

0: भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
2: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
5: अरे, ये तो बिल्कुल शांत है।

0: अरे ये तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
1: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
2: और भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
1: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
3: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
1: तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
5: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
6: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
3: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
7: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
8: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़, मेधावी और मेहनती कहोड़। वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन,
9: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
10: जो आज्ञा आचार्य।
9: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जा

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक

को अपना पिता ही मानने और कहने लगे और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़।
6: ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
6: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
5: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र,
5: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
6: हाँ,
5: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
5: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।

0: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
1: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
2: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
3: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
4: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
1: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है, तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
3: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
1: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
5: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
3: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और ये भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
1: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
3: अत्यंत सुंदर।
2: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
3: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
1: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
5: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
1: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
2: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
3: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
1: आप सब अपने आप को महान समझते हैं, और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
3: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
1: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर

0: इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
1: बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राजपंडित बंदी।
2: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ क्षणों में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर।

समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। FSSAI ने सभी राज्यों से त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा और भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया।

0: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीख एक दिन पहले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पंच सरपंच के लिए मतदान 24 और 30 अक्टूबर तथा 5 नवम्बर को होगा।
1: जो प्रथम चरण का जो चुनाव है वो अपने उसकी 22 अक्टूबर को पोलिंग पार्टीज का प्रस्थान पहुंचता, जिसको हम 21 अक्टूबर कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा शेड्यूल एक दिन पीछे खिसकाया गया है। तो अब जो तृतीय चरण में सबसे ज्यादा जो आपत्ति आ रही थी वो ये था कि 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार था और उसी दिन हमने पंच सरपंच का मतदान रखा था, तो उसको हम एक दिन पहले ले जाकर के 5 तारीख को ही, 5 नवंबर को ही जो है पंच सरपंच के लिए मतदान करा देंगे और 6 नवंबर को सुबह जो है जो 10-12 वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर के उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कर लेंगे। ये निर्णय जो है जन भावनाओं को और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी आदेशों की पालना 7 अक्टूबर यानी कल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एक आदेश में कहा है कि चुनाव की घोषणा के इन भर्तियों में रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में भी शिथिलता दी गई है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर 3 अक्टूबर से आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति

0: सार्वजनिक सभा, जुलूस और धरना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। हथियारों के प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने की पर भी रोक रहेगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण है और शिकायत मिलते ही तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हुए ये बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस, बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा ठगी की राशि का पता लगाकर उसे सुरक्षित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
1: ये देखा गया था कि काफी अच्छा काम चल रहा है। 1930 पे जो कॉल्स लैंड कर रहे हैं, 0 FIRs दर्ज हो रहे हैं, 0 FIR से फुल FIR में वेरी क्विकली विद इन अ फ्यू आवर्स दर्ज हो रहे हैं। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन विद बैंक्स को जो नोटिसेस जा रहे हैं, प्रोसीजर इज वेल लेड आउट और पूरा प्रोसेस डिजिटाइज्ड है। और जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट्स जो हाई साइबर क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स में नोटिफाई हैं, तो इसको किस प्रकार से कम किया जाए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन विद बैंक्स कैसे बढ़ाए जाए और जुडिशियल प्रोसेस को त्वरित गति से किस प्रकार से लाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की बोर्ड परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पहली मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, जबकि विद्यार्थियों को अंक सुधारने का अवसर देने के लिए मई में दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था में पूरक परीक्षा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी अधिकतम 3 विषयों में अंक सुधार के लिए मई में परीक्षा दे सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में विषय वार अधिक अंक को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में 33% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को मई की परीक्षा के परिणाम तक कक्षा 11 में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले त्योहारों के मौसम में मिलावटी और असुरक्षित भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए। प्राधिकरण ने मिलावटी, नकली और असुरक्षित खाद्य उत्पादों जैसे दूध और दूध से बनी चीजें, मिठाइयां और स्नैक्स की बिक्री रोकने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही प्रमुख बाजारों में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स गाड़ियां तैनात करने को कहा, ताकि मौके पर ही जांच हो सके और निगरानी मजबूत की जा सके। इधर प्रदेश में स्कूलों में स्वस्थ और सुरक्षित खानपान को लेकर ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को संतुलित आहार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान, साफ सफाई और सुरक्षित भोजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वेलीपोर्ट विंग स्क्वाड्रन अभ्यास में AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की गन क्षमता का परीक्षण किया गया। इस दौरान अपाचे की 30mm गन से हवा में उड़ रहे मानव रहित बंशी जेट 40+ ड्रोन को निशाना बनाकर हवा में ही नष्ट किया गया। आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए ऐसी क्षमता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उद्योग आयुक्त वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने कहा है कि सरकार का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान है और आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। उन्होंने ये बात जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिस्टम लैब के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
2: और इसमें बेसिकली अब जो अपकमिंग सेक्टर है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बैटरी स्वैपिंग का और

0: इस पे जो अपकमिंग सेक्टर अगले 10 से 20 साल होगा उसमें कैसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के और बाकी बच्चे स्किल ट्रेनिंग्स ले सकें, गैप्स को यूटिलाइज कर सकें ताकि अच्छे जॉब क्रिएशन प्लस जो इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बेसिकली अब जो भी आएंगी आगे वो इन्हीं सेक्टर्स में आएंगी जितना भी, क्योंकि सरकार का भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर फोकस है। मार्केट में भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर वगैरह जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये लैब ये शायद राजस्थान की पहली लैब होगी जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है। और इनफैक्ट अब ये चीजें आगे मुझे लग रहा है करिकुलम में भी हमारा जो पॉलिटेक्निक का है, आईटीआई का है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है, उसमें भी इंक्लूड होगा।
1: जोधपुर से माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अब सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध होगी। रेलवे ने साबरमती बीजी जम्मू तवी साबरमती बीजी एक्सप्रेस का विस्तार कटरा तक कर दिया है। ये ट्रेन 18 अक्टूबर से साबरमती से चलकर जम्मू तवी के बजाय अब कटरा तक जाएगी। इससे जोधपुर सहित मार्ग के अन्य शहरों के यात्रियों को जम्मू तवी में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा आसान होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम में धनतेरस पर्व को देखते हुए बदलाव किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षा इस शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। FSSAI ने सभी राज्यों में त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा और भारतीय थल सेना की एविएशन विंग ने पश्चिमी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्रोन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद। नमस्कार।
3: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार।
3: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
4: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक,

0: कतारों से क्लिक तक। तो ये जो एक बहुत बड़ा
1: इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके आप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
2: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो

0: पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है। और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है। तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो JCB है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
1: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना JCB को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे JCBs को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
1: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
1: जी।
2: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपनी किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल,
2: तब लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला 1 रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक, ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर

0: पर बड़ा रोल निभाया है।
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन डीबीटी के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है, उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की है जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया, और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है, वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के ये? और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात हम आप कह रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं पे पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपनी बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई, गए आप सब्जी लेने गए तो UPI कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी अडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट अडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि उन्होंने उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो

0: डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना होए, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भाप नहीं पा रहे, लेकिन जितना लोग यूट्यूब वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी अवसरों की
0: बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक,
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम UPI की तो बात कर ही रहे हैं, तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
2: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे MSMEs या उद्यमी, उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो MSME भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और MSMEs को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे MSMEs अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स, इंक्लूडिंग MSMEs, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है, भारत को जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे, एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
2: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स हैं उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से,

0: उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं, ना सिर्फ भारत सरकार उस पे सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड हैं, वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल, अभी शंकर जी प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है।
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का, 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है, तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
0: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गाँव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्व

0: पूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है। और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने MyGov का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: तो बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है, और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन।
1: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है, और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
2: एक बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि आप मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना

0: उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
1: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप, उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है, वो कैसे आने वाले समय में, भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है, जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक, ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स, जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं, उनको भी तैयार कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं, तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा। सेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग

ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 9094044।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: गोंसाल्वेस भी लगे लाए, एंथोनी गोंसाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
2: माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: की हेरा फेरी है।
1: और ये है फिल्म खून पसीना।
0: खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
1: अमर अकबर एंथनी।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। वापसी हुई और जोरदार हुई। मुकुल आनंद की फिल्म मिली इंसाफ और राज सिप्पी ने उन्हें मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए विनोद ने फिर वही मकाम हासिल किया जो उन्हें पहले मिला हुआ था।

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

होती है। चल रहा था सिलसिला विनोद खन्ना के एक्टिंग का और ये खुशनुमा दौर था 1999 में। विनोद खन्ना को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

अपनी इतनी लंबी अभिनय यात्रा के बाद 27 अप्रैल 2017 को गंभीर बीमारी की वजह से विनोद ईश्वर को प्यारे हो गए। दोस्तों, यकीनन जिस्मानी तौर पर बेशक विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने एक्टर विनोद खन्ना पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट

0: मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के 10 बजे हैं, सुनते हैं ये चंद संदेश।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना
4: स्वास्थ्य।
5: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
7: आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या?
8: जी, जैसे ये वर्ड बताता है, मेनोपॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज, की एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
7: अच्छा।
8: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है, यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं, तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड, जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरी मेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रेट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
7: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
8: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज

0: वॉज इन इंडिया 45 to 50 ईयर्स है, उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है.
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है जी. तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है.
0: जी जी.
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको अभी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ.
0: जी.
1: तो नहीं होता
0: जी.
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती
0: है. यस, बड़ी भी हो सकती है. सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है.
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं.
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
0: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है. तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है. सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है. तो अगर वो जल्दी बंद होता है, यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है, उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं. और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना, वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है. और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक. तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है.
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत
0: जरूरी है.
1: यस. आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा. एक गीत सुन ले आपकी पसंद का.
0: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं. सुनते हैं ये गीत.
0: चुरा

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पाँव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमेटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आँखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: जी, अच्छा
1: जी। तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं व्हीलचेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफ़ी हद तक, काफ़ी एज तक, 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा
1: जी, डेफिनेटली
0: ध्यान रखना होगा जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि

0: महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है। तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा। तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही है, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे।
1: तो अगर ये सिम्टम्स मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम एस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर गायनेक गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर

0: रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अर गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना लें, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज़्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वेमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पर अगर ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
1: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं।
0: जी जी जी।
1: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है?
0: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो, जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
1: जी, तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए।
1: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं। गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
0: आशा भोसले
1: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है। आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करें,
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती
0: है।
1: जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस, और यस, और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमॉस्फेयर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट, या
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर।
1: जी, जी।
0: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है, ताकि माँ अपने

0: बच्चे को दूध पिला सके। और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वहीं खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
0: यस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: अच्छी बात। और महिलाओं को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज मे बी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं
1: है। अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है, जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती
1: है, महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
0: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है। तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए जी। यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें। होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ है,
1: हाँ वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे, और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे,
0: यस,
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
0: यस, और फिर सो जाते थे थक के, यस,
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था,
0: जी जी,
1: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं थे,
0: जी बिल्कुल,
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है, माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए, सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देखें।
0: यस, तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने

0: पूरी दुनिया को योग दिया है
1: जी,
0: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
0: बहुत, काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे यू नो कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ एक घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल आपने कहा, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे, और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: There are so many कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
1: ये गाना सुनना चाहती हैं, फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी,
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेगनेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी,
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है। IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम 4-5 या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन देके ज्यादा अंडा, जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफ कोर्स, हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको ICSI बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब
0: बिल्कुल,
1: तो वो ICSI बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
1: तो सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा,
1: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक ये
0: दूर करती है
1: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और दूसरी एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल

0: फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपॉजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बस खाली उतना
1: फैसिलिटी।
0: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है।
1: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
0: पहले तो यस ये पहले सब टेस्ट होती है। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है, ये नहीं है जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। काफी हद तक आई वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम,
1: ये समस्या होती है। और ये तो
0: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है।
1: लेकिन
0: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट।
1: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
0: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल लड़की या बॉय।
1: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
0: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
1: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि IVF से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: ज़रूरी है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: Yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि, और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। कि एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टेन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर

0: बटन टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं. मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज़ के बारे में. सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो.
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए. डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का गीत.
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना.

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, 6 महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निप्पल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के 11 बजे है, सुनते हैं ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
7: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
8: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
9: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

पामेला जैन की आवाज में अभी आपने मदन मोहन महेश्वरी की ये रचना सुनी। संगीत दिया था कुमार मंजुल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए एक पारंपरिक रचना, स्वर अली गनी का और संगीत भी अली गनी का ही है।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की।
1: तोड़ के ना जाओ मेरे हमनवा।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुश्री का गाया ये पारंपरिक गीत।

0: इसका चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल

0: के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज विनोद खन्ना, जाने माने अभिनेता, जी हाँ, जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना? उनकी आवाज़, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूक केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

0: کر لوں شادی خانہ آبادی، سلج جائے پل میں میری برسوں کی الجھن طیب ال۔
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। दिन के ठीक 12:15 बजे हैं। सुनते हैं ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी,

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
6: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
7: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
8: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
9: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
10: आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम परवरिश।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम तुम और वो, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद खन्ना के, वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: झाले भरे भरे
1: हरे हरे
0: तू काहे डरे डरे
1: हरे हरे
0: आज झाले तुझा
1: राधे श्याम।
2: और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए। स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीना।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप वन का जलावतरण किया। उन्होंने स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलिया

क्रेन का भी उद्घाटन किया। उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को भारी जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। फ्लीट सपोर्ट शिप भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहला है। स्टील कटिंग शुरू होने के 18 महीने बाद 43,500 टन वजनी ये जहाज बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। ये फ्लीट सपोर्ट शिप समुद्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को ईंधन, पानी और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेंगे, जिससे वे अधिक समय तक तैनात रह सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सिरसी रोड स्थित एक निजी कॉलेज में उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से 900 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समारोह में सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पंचायती राज संस्थाओं के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि धनतेरस पर्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। धार्मिक आस्था और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की तारीख एक दिन पहले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 और 28 अक्टूबर तथा 3 नवम्बर को होगा। पंच सरपंच के लिए 24 और 30 अक्टूबर तथा 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उप सरपंच का चुनाव 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 नवंबर को होगा। श्री सिंह ने बताया कि शेष घोषित चुनाव कार्यक्रम यथावत रहेगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी आदेशों की पालना 7 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एक आदेश में कहा है कि चुनाव की घोषणा के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में भी शिथिलता दी गई है। राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श दिए जा चुके हैं। इसके जरिए लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे बिना अपने आसपास से ही डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिल रही है। प्रदेश में आज मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसलमेर में ANM प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षणार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने और चिंता तथा भय से दूर रहने का संदेश दिया गया। सवाईमाधोपुर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्ति, नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मनोचिकित्सक डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने तनाव के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और मृत्यु दर घटाने के लिए हर जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग कार्य योजना लागू की जा रही है। परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने ये जानकारी सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने ब्लैक स्पॉट पर प्रभावी कार्रवाई करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वाहन चालकों को नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थी और संबंधित विद्यालय 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजकीय संस्कृत निजी विद्यालयों, मदरसा बोर्ड के स्कूलों तथा मूक बधिर और दृष्टि बाधित स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताज़ा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक

शख्स दिल को अपना सा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के कार्यक्रमों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या का वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहाँ, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहाँ मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे की मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया, जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई, ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहाँ से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है। बहुत सुंदर, और यही हाल हर

बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहाँ बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूँ और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। चलिए आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो ये अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज़्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखी है, लेकिन इससे पहले हम सवाल दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है। आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी, न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया ये अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा। बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज़ आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज़ सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया। दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्मपत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी। बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली। कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान भरी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, बस मजा आ जाता है। बस आपका ही सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही

नमस्कार। मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है। कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है, किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहाँ देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूँ। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा, इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है, जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इला अरुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इला अरुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया, जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे, जो अब भी हैं। चमड़े से बनी सफ़ेद चप्पल पहने, सफ़ेद पतली कटारीदार मूछें, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा ये वाक्य याद आ गया। देखिए, आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे। इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है, आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे कहते हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूँ मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है। विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैया लाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों को आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार, है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूँ, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुँचा भी देंगे उन तक। वही एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई, बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप। अच्छा, नहीं हंसेंगी पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी। आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो भय वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद हैं, कौन कौन से गीत हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत।

जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना

0: कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच

0: पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।

0: उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पीर पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टेचिबिलिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और

0: पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और बीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म

0: 2006 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश,
2: राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नुमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

सादा मस्ताना सर से।

0: जोश पर आई हुई वही वही वही वही वही वही सुभान अल्लाह।
1: ओ तेरा जवाब नहीं
0: है गजब के गुलाबी ये गाल तेरे है घटाओं से उड़ते ये बाल तेरे क्या नखरे दिखाते कमाल तेरे ओ तेरी पतली कमर का जवाब।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।

0: एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: हेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखियों सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: जिससे कि जैसे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: अभी हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: हाँ, ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करने
2: आज
1: वाले हैं?
2: हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर।
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब
1: जी। और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले हैं लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या,
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध है ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई सजावट घर की होती है,
2: काम करना पड़ता
1: है। त्योहार मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा। तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना होता है सच्ची में, खरीदारी करने जाना है मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
1: और ये जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता हैं वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते हैं चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है,
2: बिल्कुल
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा
1: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था, और इसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध बुध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध बुध नहीं रहती, और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दियामाटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली, महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गाँव की महिलाओं ने, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हैं, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, यानी कि सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गाँव की है, और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो

0: मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी
1: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज़ के लिए बहुत आसान तो नहीं था क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गांव-गांव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये सब नए शब्द थे उनके लिए क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
1: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज़ नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार शक्ति है उसको बढ़ाना था।
0: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, यानी कि आप समझ लीजिए जो भी कुछ गाँव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
1: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज़ आज एक क्लिक के ऊपर में मिलती है तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी
1: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचें कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
0: अभी समय हो गया एक छोटे से
1: अंतराल का।
0: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है,
1: है भी
0: अब
1: अच्छा।
0: बात करते हैं एक मुहावरे की जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आ बैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मुसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन मुसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थिति या जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश हैं इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए हैं तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया, पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

0: प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया।
1: आरती, ये खूबसूरत गीत था ब्लफ मास्टर फिल्म का, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भैया? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार। नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारी

0: हमें पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज़ नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज़, भाई नहीं रख दो काम की चीज़ है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारतीय फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते, कोई डिब्बा है तो उसको खाली चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: चीजों के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू, अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पे डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते हैं ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं जूते भी लेने हैं सजावट की चीजें भी ले लो तो कुछ मिठाई भी ले लो, भाई जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दीजिए
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं जो सामान होता है सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते, नहीं ये वाला झूमर भी ले लें ये वाली कंदील भी ले लें ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का साथ ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं है ना,
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी है बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है, और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया, ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से कर,
1: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखी, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा है कि आज हम काम कर रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहाँ सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्यौहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएँ, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई
1: है। बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मज़ा होता है इन चीज़ों का।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ़ सफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफ़ी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्यौहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मज़ा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहाँ एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्यौहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं, अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ लेती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीज़ें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में, फिर जब ये त्यौहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं।

0: मकड़ियों की उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयाँ पहुँचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ही खुशियाँ बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्यौहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीज़ों में मेरी जो चीज़ें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्यौहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्यौहार में सफाई होती ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद करें, ताकि हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो सामान।
0: तो हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की, अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी, इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर खुशी, संतोष और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है तब मन में भी खुशियाँ, जो खुशियाँ उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
0: बिल्कुल। घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्यौहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है, जब उनके साथ मिल बैठ कर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज हैं उनके लिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, किसी को थोड़ी कम होती हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की ज़रूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाज़ों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से श्रोता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं,
1: देखिए ना संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे हैं।
0: हाँ तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्यौहार को सच में त्यौहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया, तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है, फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन लेते हैं गाना।

0: तो भाई इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सायोनारा कहने का
1: वक्त, हम भी सायोनारा कहते
0: हैं, कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर ये वादा करते हैं,
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है। और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है, और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं, जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी, मतलब मैं थोड़ा सा खोया हूँ, क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं, और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूँ, कैसे बात करूँ।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है, ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम

0: विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ,
1: बिल्कुल।
0: तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है,
0: हैं।
1: क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ। और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए। तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
0: हाँ, 4 या 5 बजे
1: हाँ जी,
0: शायद।
1: हाँ जी, हाँ
0: हाँ
1: जी।
0: जी,
1: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, हम बच्चे ही थे, और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया, और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में, जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के
0: जी।
1: फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
0: जी।
1: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
0: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ
0: जी।
1: कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
0: जी
1: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
0: क्या
1: चाहता
0: बात
1: हूँ,
0: है।
1: है
0: ये
1: ना।
0: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत
1: बिल्कुल,
0: धन्यवाद इसके
1: यार
0: लिए।
1: शुक्रिया।
0: बचपन की जैसे बात की आपने,
1: हाँ जी,
0: तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
1: हाँ जी,
0: क्या
1: हाँ
0: वो इस
1: जी।
0: चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मायनों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में।
1: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहां पे मतलब, चूंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था, और गाने चल रहे होते थे, मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी। तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे।
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
1: नहीं, कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
0: अच्छा।
1: है ना, बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है।
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
0: अच्छा।
1: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा। तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार

0: ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊँ मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और सपनों की नगरी में आना ही है।
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे
1: जी,
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे?
0: अरे बहुत।
1: किस तरह के आपने बचपन को जिया है जैसे?
0: जी जी।
1: तो किस तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच?
0: बिल्कुल।
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह है कि जहाँ मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है।
1: अच्छा।
0: नदी से इसलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहाँ पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहाँ पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन।
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी।
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाएं, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है। वहाँ एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं।
1: अच्छा।
0: बट मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलॉसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास।
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूँ कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है।
0: हाँ।
1: जिसे हम बाहर तलाशते हैं
0: जी। और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा और मुझे काम मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे,
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से, मैं भूल जाता था चीजें। जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा।
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार, तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूर

0: लिख दूं, कभी दीर्घ लिख दूं किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार, तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस ले लो।
1: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
0: हाँ जी
1: तो
0: हाँ
1: उस
0: जी
1: तरफ रुझान शुरू से था।
0: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल हैं, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया,
1: अच्छा।
0: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ, बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
1: ये आपने पटना से किया
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जी।
0: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
1: बिल्कुल।
0: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
1: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
0: हाँ
1: आ गया
0: जी
1: था,
0: हाँ जी हाँ
1: इसीलिए
0: जी हाँ
1: वो
0: जी,
1: फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
1: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
0: देखो,
1: सुनेंगे?
0: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूँगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूँगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
1: जी।
0: अरे

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से आया?
1: ये सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
0: बिल्कुल
1: भूल ना जाऊँ। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं नहीं फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ
0: जी
1: रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया,

0: उसमें वो एक बांधा गया चोंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
1: अच्छा
0: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया
1: जी
0: उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई, बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1-2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियाँ आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12-15 सवाल तैयार करके रखा था। यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है। मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूँ मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा।
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, सफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा।
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीच का जो होता है ना, वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है। होता कुछ नहीं है वहां,
1: बिल्कुल
0: लोग को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूँ माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूँ, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूँ, एक कमाल की एनर्जी में होता हूँ। ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है ये बात, एक्शन और कट
0: बिल्कुल
1: के बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस। जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि उस लम्हे को जी लूँ, उस पल को जी लूँ। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है। उसके आसपास भी चला जाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुँचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुँचे थे। तो वहाँ थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक,
0: जी
1: कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी
1: मैं उसमें बाल कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लगता था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें, है
0: जी
1: ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूँकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊँगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
0: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सकें।

0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
0: जी।
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल।
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगूं। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहाँ जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहाँ पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी
0: हाँ
1: याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूँ, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ लगता क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा,
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो TV में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, या मुंबई में हूँ, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूँ,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत ज़रूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत ज़रूरी था, तभी तो आज जब चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं हूँ, उछलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी,
1: अच्छा
0: तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहाँ भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहाँ
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर

0: इन्फिनिटी या फिर उधर यसराज लेन होते हुए सशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था।
1: अच्छा।
0: और सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था। और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, चूंकि ये चीजें मैंने देखा है, भोगा है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं, इसलिए सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा।
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें। अच्छा। तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया।
1: अच्छा।
0: उसमें सोल वगैरह कुछ नहीं था। तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है, रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई मेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है।
0: आशीर्वाद है। अगर वो लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए, यहाँ सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके।
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं सारे बचपन के सारे गाने लेकर के
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।
0: हाँ जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी सोनिका का प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगी और कर रही होंगी बेसब्री से हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार। तो सखियों लीजिए, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए चर्चा के एक नए विषय और नवीन जानकारी के साथ। सखियों, मनुष्य के जीवन में सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, यह मार्ग सदैव सरल नहीं होता। जीवन में अनेक बाधाएं, कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सखियों, संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है, श्रमेण सर्वम साध्यम। इसका अर्थ है परिश्रम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और आज यही हमारी चर्चा का विषय है। सखियों, वास्तव में परिश्रम वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। सखियों, परिश्रम जीवन की सफलता की आधारशिला है। संसार में जितने भी महान व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, उनके पीछे निरंतर परिश्रम और संघर्ष रहा है। केवल प्रतिभा या बुद्धि होना पर्याप्त नहीं होता, उसे सही दिशा में लगाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से अध्ययन करे, समय का सदुपयोग करे और कठिन विषयों का अभ्यास करता रहे, तो वह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। सखियों, किसान खेत में श्रम करता है तभी उसे अच्छी फसल मिलती है। खिलाड़ी नियमित अभ्यास

जाता है तभी वह प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक वर्षों तक शोध और प्रयोग कार्य करते रहते हैं तभी जाकर नई खोज संभव कर पाते हैं। सखियों, आलस्य मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जो व्यक्ति बिना मेहनत के सफलता की इच्छा करता है वह अक्सर अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय हमें अपने कर्म और परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए यह स्पष्ट है कि श्रमेण सर्वम साध्यम केवल एक उक्ति नहीं बल्कि सफल जीवन का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। परिश्रम मनुष्य को आत्मविश्वासी, अनुशासित और सक्षम बनाता है। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके निरंतर मेहनत करनी चाहिए। सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और निरंतर परिश्रम से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में। सखियों, धरती को हम माता कहते हैं क्योंकि ये हमें अन्न, जल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। लेकिन बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम खेती को अधिक टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल बनाएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है। सखियों, आप सोच रही होंगी कि पीएम प्रणाम योजना क्या है। तो सखियों, पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इस योजना को 28 जून 2023 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। सखियों, इस योजना की एक और विशेषता यह भी है कि इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि किसी राज्य में यूरिया, DAP, NPK और MOP जैसे रासायनिक उर्वरकों की खपत पिछले 3 वर्षों की औसत की तुलना में कम होती है तो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% तक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से जैविक खाद, जैविक उर्वरक और अन्य वैकल्पिक पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देकर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आज की फसल को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वस्थ भूमि, सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करना है। सखियों, पीएम प्रणाम योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक संदेश है। मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल भी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ फसल से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसलिए ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए जो उत्पादन के साथ प्रकृति का संरक्षण भी करे। सखियों, वक्त हो चुका है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। सखियों जरा सोचिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? धन, दौलत या कोई बड़ी संपत्ति? नहीं, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ्य। और एक अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखता है संतुलित और पौष्टिक आहार। इसी महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। यह अभियान सितंबर से अक्टूबर तक पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। सखियों, पोषण का अर्थ केवल भरपेट खाना खाना नहीं, बल्कि ऐसा भोजन लेना है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा उचित मात्रा में हो। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित भोजन विशेष रूप से आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देना स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें। बच्चों को जंक फूड की बजाय घर का पौष्टिक खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा हो ये जरूरी नहीं। हमारे घर और आसपास मिलने वाली चना, मूंगफली, दालें, ज्वार, बाजरा, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल भी पोषण के अच्छे स्रोत हैं। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनी थाली में शामिल करके हम कम खर्च में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सखियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं या समय बचाने के लिए फास्ट फूड पर निर्भर हो जाते हैं। यह आदत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए समय पर भोजन करना और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना भी जरूरी है। जब हर परिवार पोषण को अपनी प्राथमिकता बनाएगा, तभी एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण होगा। आइए मिलकर स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। पौष्टिक आहार अपनाएं, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। तो सखियों, वक्त हो चुका है मनोरंजन का। इस गीत के साथ ही दीजिए आपकी सखी सोनिका को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारती। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे मन की उस आदत की जो अक्सर हमें परेशान करती है, और वो आदत है उन बातों के बारे में लगातार सोचना जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बीती हुई घटनाएं, दूसरों के कमेंट्स, आने वाला कल या परिस्थितियां, इन पर चिंता करके या बार बार इन्हें सोचकर हम अपनी सारी एनर्जी इस पर लगा देते हैं, जिससे हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को उन बातों में ना उलझाएं जिन पर हमारा वश नहीं। जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, या बीते हुए समय को वापस कैसे लाया जाए, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया कैसी रखें। दोस्तों, हमारा मन बहुत विचित्र है। जिस बात को हम भूलना चाहते हैं वही बात हमें बार बार याद आती है। जिस समस्या का समाधान हमारे हाथ में ही नहीं होता उसके बारे में हम घंटों सोचते रहते हैं। हम अपने मन में ऐसे सवाल पैदा कर लेते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता तो आगे क्या होता, अब आगे क्या होगा। लेकिन इन सवालों में उलझकर हम वर्तमान का वो समय भी खो देते हैं जिसे हम बेहतर बना सकते थे। जीवन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमारी मेहनत, हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारी सोच काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है, लेकिन मौसम कैसा रहेगा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा या भविष्य में क्या होगा, तो इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाने लगते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ रिश्ते हमारे साथ नहीं है। हर चीज़ को बदलना ज़रूरी नहीं, हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं। मन को उन राहों में मत भटकने दो जहाँ लौटकर कुछ मिलना नहीं। जिस पल को जी सकते हो आज, उसे कल की चिंता में खोना नहीं। मान लीजिए किसी परीक्षा का परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं आया। परिणाम आने के बाद बार बार ये सोचना कि काश मैंने ऐसा किया होता, ये हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन उसी अनुभव से सीख लेकर अगली बार हम अधिक तैयारी करना हमारे हाथ में। इसी तरह किसी व्यक्ति ने हमें ठेस पहुंचाई है तो हम उसके व्यवहार को नहीं बदल सकते कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसके जाके हम व्यवहार बदल दें, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उस घटना को हम अपने मन पर कितना हावी होने दें, कितना असर हम उस बात का अपने ऊपर होने देते हैं, कैसे उस बात से हम डील करते हैं। किसी की कही हुई बात को बार बार याद करके हम अपने वर्तमान के कई अच्छे पलों को खराब कर सकते हैं। जो बीत गया

दोस्तों, आज की रोचक जानकारी में हम बात करेंगे कि पहाड़ों की ट्रेनों का नाम टॉय ट्रेन क्यों पड़ा। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक शासन किया और जाते जाते वो अपना वजूद यहाँ छोड़ गए। फिर चाहे वो रेलवे हो, चाय कॉफ़ी हो, हिल स्टेशन हो या हो उनकी भाषा, आज हम इन्हीं में से एक टॉय ट्रेन की बात करेंगे और जानेंगे कि एक ट्रेन टॉय क्यों कहलाई और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साल 1853 में एक क्रांति कर चुके थे, क्योंकि उनकी भारतीय रेलवे की पूरे देश में विस्तार करने की योजना का पता चल चुका था। पर अभी भी समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं निकला था, क्योंकि भारत में कुछ इलाके ऐसे थे जो पहाड़ों पर बसे थे और जहाँ की आवाजाही बेहद मुश्किल थी। ये वो दौर था जब पहाड़ों पर पहुँचना सात समुद्र पार करने जितना मुश्किल था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने पहाड़ों के बीच से ही रेल लाइन निकाली। ये महज 88 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें नैरो गेज पटरियाँ, घुमावदार मोड़, अंधेरी सुरंगों के बीच से रास्ता, लूप और जिगजैग, धीमी सी गति और छोटे छोटे हिल स्टेशन, ऐसी कुछ खूबियों के साथ टॉय ट्रेन बनाई गई। दोस्तों, इस तरह भारत की पहली टॉय ट्रेन का नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे था। ये पहली टॉय ट्रेन 4 जुलाई 1881 को सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच शुरू हुई थी। इसे भारत की पहली पर्वतीय रेल परियोजनाओं में गिना जाता है, जिसने उस दौर में पहाड़ों में रहने वालों के लिए यात्रा को तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाया था। आज भी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच ये उतनी ही शान से चल रही है। यहाँ जानने वाली बात यह है दोस्तों कि अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों की सुविधा के लिए इस ट्रेन को नहीं बनाया था। दरअसल ये वो समय था जब ठंडे इलाकों से आने वाले अंग्रेजों को भारत की गर्मी रास नहीं आ रही थी और वो ठंडे इलाकों की तरफ रुक कर रहे थे। वहीं चीन से व्यापार रुक जाने के बाद असम और दार्जिलिंग क्षेत्रों में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाय के बगान लगाए गए थे। अब ऐसे में जरूरत ये थी कि इन मार्गों का रास्ता आसान बनाने की, इसी वजह से इन छोटी ट्रेनों का निर्माण किया गया। अब बताते हैं आपको कि इन ट्रेनों को टॉय ट्रेन क्यों कहा गया। क्योंकि इन ट्रेनों और पटरियों का आकार बहुत छोटा था, इस वजह से स्थानीय लोगों ने इन्हें खिलौना या टॉय ट्रेन कहना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रेलवे लाइंस टॉय ट्रेन के नाम से ही दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके रूट की बात करें तो इस टॉय ट्रेन का सफ़र न्यू जलपाईगुड़ी में समुद्र तल से करीब 100 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, जो आगे जाकर दार्जिलिंग में करीब 2200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई करते हुए जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार रोचक जानकारी। अब चलते हैं हमारे थीम सेगमेंट की ओर। मैं आपको पहले कुछ क्लू दूंगी और आपको पहचानना है कि आज की हमारी बात किस थीम वर्ड के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये छोटी होती तो रिश्ते बचा सकती है, ये छोटी होती तो रिश्ते बचा सकती है, और ज़्यादा हो जाए तो अच्छे खासे रिश्ते भी बिगाड़ सकती है। कभी ये दिल का हाल बयां करती है, कभी नाराज़गी जताती है, कभी प्यार बढ़ाती है, और कभी सिर्फ दो लोगों के बीच की खामोशी को तोड़ देती है। तो दोस्तों, आपको सोचना है कि आज की हमारी थीम क्या हो सकती है।

तो उम्मीद करती हूँ आपने गैस कर लिया होगा कि आज की हमारी थीम है बातें। बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, कभी खामोशी में भी कहानी होती है। किसी की एक छोटी सी बात दिल छू जाती है और कभी सालों की बातें भी अधूरी रह जाती है। आजकल बातें कम नहीं हुई है, बस रियल बातें थोड़ी कम हो गई है। चैट्स लंबी है पर कन्वर्सेशन छोटी। हंड्रेड ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं पर कुछ ही लोग हैं जिन्हें बिना सोचे क्या हालचाल है कह सके। कभी हम सीन को रिडक्शन समझ लेते हैं, ऑनलाइन को अवेबिलिटी समझ लेते हैं और आई एम फाइन को सच। लेकिन हर नोटिफिकेशन के पीछे एक इंसान है जिसके पास अपनी कहानी है, अपनी उम्मीदें हैं और है तो कुछ अनकही बातें जिसे वो सबको बताना चाहता है, समझाना चाहता है। कुछ बातें हंसी बनकर याद रहती हैं, कुछ आँखों में नमी बनकर। कुछ लोग चले जाते हैं मगर उनसे हुई बातें रह जाती हैं।

बातें अजीब होती हैं, कभी वक्त गुजार देती है, कभी वक्त रोक देती है। हम रोज़ बहुत कुछ बोलते हैं पर हर बात दिल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, सुनना और उन बातों को समझना भी बातों का ही एक हिस्सा है। इंसान के रिश्ते अक्सर बातों से बनते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती बल्कि उसके साथ एक कनेक्शन भी बनाती है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ उनकी बातों को नहीं सुनते बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में बातें और भी आसान हो गई है। एक मैसेज, एक कॉल या एक वॉइस नोट जिससे हम दूर बैठे किसी भी अपने तक पहुंच सकते हैं। फिर भी कभी कभी सबसे ज़रूरी बात वही होती है जो हम कह नहीं पाते। बातें सिर्फ बातें नहीं होती, वो दो दिलों के बीच एक बना रास्ता होती है जहाँ लफ्ज़ धीरे धीरे चलते हैं और एहसास बिना आवाज़ के पहुँच जाते हैं।

किया करिए तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं?
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।

0: ये।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरिस का चैनल है। अभी सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
7: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
6: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता

0: वक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही समय यानी कि 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। साथ ही फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7 बजे का आकाशवाणी जयपुर से। लोक संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 से। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार चिंतन। 6:30 का समय रहेगा झरोखा कार्यक्रम का। रामचरित मानस गान आप सुन सकेंगे सवेरे 6:35 पर। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:45 पर। सवेरे 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर का। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रभात आप सुनेंगे सवेरे 8 बजे। 8:15 का समय रहेगा सुगम संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग इस कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30 का। सवेरे 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला का। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:45 10:01 11:01 12:05 12:16 1:05 और 2:30 का।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से। समय रहेगा दोपहर 1 बजे। अंग्रेजी समाचार और दोपहर समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे और 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से।

महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे का। 5:30 पर आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा शाम 6 बजे और रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 पर और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा शाम 7 बजे का। लोक संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा 9:15 का। और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सुरेश वड़ेकर की आवाज में आपको सुनवाते हैं सदमा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है इलियाराजा का।

0: सिंपल। सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सड़क से। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत है जतिन ललित का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड भी स्वीकृत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। जैसलमेर बीकानेर और सलोम्बर जिलों की कुछ पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उर्वरकों के वितरण की सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती जीडीपी और परिवहन आवश्यकताओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए एक नई शीर्ष संस्था ITLA की स्थापना की जाएगी। ये प्राधिकरण सड़क रेल बंदरगाह नागरिक उड्डयन और जलमार्गों के विकास के लिए लंबी अवधि की एकीकृत योजनाएं तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये फंड एमएसएमई को विस्तार के लिए इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा। ये फंड सेवा प्रौद्योगिकी नवाचार आधारित क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य श्रृंखला से जुड़े उद्यमों को भी सहयोग देगा।
2: 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोफेशनली मैनेज होगा। जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा, इसको फंक्शनल किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा काल के 25 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। वे वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के 25 साल कल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में कल से सेवा सेतु अभियान के तहत ये शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 16 अक्टूबर तक चलेंगे। इन जोनवार और वार्डवार शिविरों के माध्यम से नागरिकों के लंबित कामों का समाधान किया जाएगा। भारत ओडीओपी संगम कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक भारत मंडपम में होगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और सह विक्रय कार्यक्रम में देश भर की 600 से ज्यादा इकाइयां और प्रदर्शक हिस्सा लेंगे।

0: प्रदेश के विभिन्न जिलों के 38 ओडीओपी उद्यम अपने विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें रत्नाभूषण, मार्बल, हस्तशिल्प, वस्त्र और परिधान शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। चौथे चरण के चुनाव का शेड्यूल यथावत रखा गया है। इन तीनों चरणों की मतदान प्रक्रिया को एक एक दिन पहले करना तय किया गया है, यानी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने, मतदान केंद्र तक पहुंचने और नामांकन दाखिल करने तथा मतदान के कार्य पूर्व निर्धारित दिन से एक दिन पहले होंगे। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और सलूम्बर जिलों की चुनिंदा पंचायत समितियों के विभिन्न चरणों की समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को धनतेरस पर्व होने के कारण जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। इसके अलावा दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी सुगम मतदान के इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर निगरानी की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किसानों की मांग के अनुसार डीएपी और यूरिया का सुचारू और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। वे आगामी रबी सीजन 2026-2027 के लिए आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक में बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि रबी बुआई के समय में प्रदेश में खाद की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी और आपूर्तिकर्ता कंपनियां आपसी समन्वय से काम करें। बैठक में कृषि और उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यूरिया का 373,000 मीट्रिक टन और डीएपी का 1,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का भंडार है। साथ ही प्रदेश में 744 उर्वरक निरीक्षकों के माध्यम से खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और दक्षिण पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज राज्य युद्ध पुस्तक और नागरिक सैन्य समन्वय समिति की भी बैठक हुई। इसमें राज्य की सुरक्षा तैयारियों, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक मुस्तैदी को बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य युद्ध पुस्तक को अपडेट करने और रक्षा भूमि मामलों के जल्द निपटारे पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सेना के अधिकारियों ने ड्रोन, जैमर और काउंटर ड्रोन प्रणाली का प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों और तस्करी की रोकथाम के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में शांति, विकास और संपर्क व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया है। एक रिपोर्ट।
1: अष्टलक्ष्मी राज्यों यानी पूर्वोत्तर भारत में पिछले 12 सालों में सड़क, रेल और हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। वहीं बीते 12 सालों में 12 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान हुआ है। 10,800 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा का रास्ता अपनाया है। उग्रवाद में कमी आने से नागरिक हताहतों की संख्या में भी 86% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट की नीति के माध्यम से पूर्वोत्तर को व्यापारिक हब के रूप में विकसित

0: करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन, कृषि और बागवानी, डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता, आर्थिक गलियारे के विकास, खेल तथा हस्तशिल्प प्रोत्साहन के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश का प्रमुख विकास इंजन बनाया जा रहा है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
1: वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये अदालत लगाई जाएगी। इसमें समझौता योग्य दीवानी और फौजदारी मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। इनमें बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम मामले, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद और अन्य संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। लंबित मामलों की संख्या कम करने और विवादों के जल्द समाधान के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के कारण इसके आयोजन की तारीख 12 सितंबर से बदलकर 10 अक्टूबर की गई है। 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आज जयपुर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में देशभर से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज योग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में दुनिया भर में नई पहचान और मान्यता मिली है। योग शारीरिक व्यायाम के साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर और जीवन पद्धति भी है।
2: हमारे छोटे से छोटे बच्चे और युवा योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में भी अपना रहे हैं। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और ऋषियों की वह अनमोल धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ, संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है। इस प्रतियोगिता में इन बच्चों की एकाग्रता, अनुशासन और कौशल इस बात का प्रमाण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी सशक्त हो रही है।
1: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का आज से आगाज हो रहा है। पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा। एकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड भी स्वीकृत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। जैसलमेर, बीकानेर और सलुम्बर जिलों की कुछ पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उर्वरकों के वितरण की सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए। कम बारिश के कारण बीसलपुर बांध में पानी की आवक और खरीफ फसलों की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रबल कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले की 10 नगर निकायों में मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित किए गए। 7 निकायों में भाजपा और 3 में कांग्रेस के अधिक पार्षद चुने गए। टोंक नगर परिषद के 59 वार्डों में कांग्रेस के 32, भाजपा के 19 और निर्दलीय प्रत्याशी 8 वार्डों में विजयी रहे। मालपुरा में भाजपा के 22, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 12 प्रत्याशी जीते। डिग्गी में भाजपा के 14, कांग्रेस के 10 प्रत्याशी विजयी रहे। लांबा हरि सिंह में भाजपा के 11, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 प्रत्याशी जीते। निवाई में कांग्रेस के 9, भाजपा के 18 और निर्दलीय 3 प्रत्याशी विजयी रहे। पीपलू में भाजपा के 10, कांग्रेस के 7, निर्दलीय 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। टोडा राय सिंह में भाजपा के 28 और कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जीते। देवली में भाजपा के 17, कांग्रेस के 8 और निर्दलीय 10 प्रत्याशी विजयी रहे। दूनी में भाजपा के 12, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी तथा उनियार

0: में कांग्रेस की 11, भाजपा के 5 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। जिले में इस बार कम बारिश के कारण बीसलपुर बांध पूरा नहीं भरा है। 15 जून से पहले अब तक जिले में 443.30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मॉनसून से पहले बांध में 313.49 आरएल मीटर पानी था, जो बढ़कर सिर्फ 313.95 आरएल मीटर हुआ है। बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा जयपुर और अजमेर को भी पेयजल मिलता है। बांध में पर्याप्त पानी नहीं आने से आने वाले वक्त में पेयजल व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी कम रह सकती है। जिले में कम बारिश के कारण खरीफ की फसलों पर भी असर पड़ा है। पानी की बचत और जल स्रोतों की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत बताई जा रही है। टोंक में 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयोंस का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में रूस और नेपाल सहित देश के 18 राज्यों से करीब 250 चित्रकार और मूर्तिकार शामिल हुए। कलाकारों ने चित्र और मूर्तियों के माध्यम से अपनी कला प्रस्तुत की। समापन समारोह में विभिन्न वर्गों के कलाकारों को कला रत्न सम्मान दिए गए। स्वतंत्र चित्रकार, मूर्तिकार और विद्यार्थी वर्ग की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। निवाई के रीको औद्योगिक क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने एक ऐसी इकाई पकड़ी जहां अलग अलग कंपनियों के नाम और डिजाइन वाली घी की पैकेजिंग तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इकाई से कई कंपनियों के 1.5 लाख से अधिक नकली रैपर बरामद किए गए। करीब 20,000 टीन और पीपे भी मिले। इसके अलावा पैकिंग मशीनें, कलर फ्रेम और डाई भी बरामद की गई। पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद और एक कार भी जब्त की। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नाथमाम में ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम हुआ। टोंक ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के 60 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। विद्यार्थियों ने 21वीं सदी के कौशल विकास से जुड़ी 14 गतिविधियों में प्रस्तुतियां दी। बालक वर्ग में अरनिया केदार विद्यालय के आनंद टाटावत और बालिका वर्ग में कोठी नाथमाम विद्यालय की फिजा पहले स्थान पर रही। देवली के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में इनोवेशन विथ रोबोटिक्स विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स और नई तकनीक से जुड़े प्रयोग कराए गए। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान खोजने और नए विचारों पर काम करने के बारे में बताया। राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में साल में 2 बार ECCE डे यानी बाल मेला आयोजित किए जाएंगे। इनमें टोंक जिले के 16 विद्यालय शामिल हैं। मेलों में बच्चों के लिए खेल, रचनात्मक गतिविधियां और सीखने से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण बना मंडरी मंजूरी दीनी। नाना और मझला कारोबार रा विकास सारू 10,000 करोड़ रुपया रो ग्रोथ फंड ही मंजूर करी चियो। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव रो नुओ कार्यक्रम जारी कीनो। जैसलमेर, बीकानेर और सलूम्बर जिला रे कुछ पंचायत समितियां रा चुनाव कार्यक्रम में आए बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास खाद मुहैया करावन री साफ कोई सागर व्यवस्था तय करण रा हुक्म दीना। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर माय पूरी भी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण बनावन री मंजूरी दीनी है। आज नई दिल्ली में भी कैबिनेट री मीटिंग पाछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे कहो कि देश री बढ़ती जीडीपी और परिवहन जरूरतान ने व्यवस्थित तरीकाओं पूरी करण सारू नवी संस्था ITLA बनाई जावेला। उपाधिकरण सड़क, रेल, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन और जल मार्ग का विकास सारू लंबी मियादरी एकीकृत योजना में बनावेला।
2: 10,000 करोड़ रुपीस का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना

0: एफडीआई ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा, इसको फंक्शनल किया जाएगा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल नाना और मझला उद्यम इक्विटी निवेश सारू 10,000 करोड़ रुपया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनावन रही मंजूरी दीनी। श्री वैष्णव बतायो कि वो फंड एमएसएमई रो कारोबार बढ़ावन सारू पूंजी मुहैया करावेला। ये फंड रे जरिए सेवा प्रौद्योगिकी नवाचार आधारित हलका और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं जुड़िया कारोबार में आई मदद दी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जनतारी सेवा करता 25 साल पूरा फेवन परा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर अरवा ने बधाई दीनी है। श्री मोदी 7 अक्टूबर 2001 ने पहली दफा गुजरात रा मुख्यमंत्री बनिया है। वह साल 2014 में देश रा प्रधानमंत्री बनिया। ई भांत सरकार रा मुखिया रा तौर वारा कामकाज रा काल 25 साल पूरा फेरिया है। इस सिलसिला में राज्य में काल 16 अक्टूबर ताई सेवा सेतु अभियान रातेत खास शिविर लगाया जावेला। आ जोन वार और वार्ड वार शिविरा में जनता रा न्यारा न्यारा काम निपटाया जावेला। भारत ओडीओपी संगम काल नई दिल्ली में शुरू भेला। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी रियो रून लगाई इनमें देश भर री 632 इकाइयां और प्रदर्शक शामिल फैला। नुमाइश में प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला रा हीरा जवाहरात गहना मार्बल भट्टा हाथ री कारीगरी बनिया सामान और कपड़ा लत्ता समेत 38 ओडीओपी उद्यम वाना सामान रो दर्शाव करेला। राज्य निर्वाचन आयोग आवता पंचायती राज चुनाव रा कार्यक्रम माय फेर बदल की नो है। नुआ कार्यक्रम रे मुजब पहला दूजा और तीजा दौर रे मतदान प्रक्रिया माय बदलाव करीचियो है, जदक चौथा दौर रा चुनाव कार्यक्रम माय कोई बदलाव नहीं करीचियो है। पहला तीन दौर रे मतदान प्रक्रिया एक एक दिन पहली करनू तय करीचियो है, जिनु पोलिंग पार्टियां ने रवाना भेवन मतदान केंद्र ताई पूगण और वोट देवन रा काम पहली तय करीजी तारीख एक दिन पहली वेला। जैसलमेर बीकानेर और सलूमर जिला माए कुछ पंचायत समितियां माए भेवन वाला न्यारा न्यारा दौर रा चुनाव रा कार्यक्रम माए बदलाव करीचियो है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि 6 नवंबर ने धनतेरस रो त्योहार भेवन जनता री भावनावां ने ध्यान रखता थका ओ फैसलो करीचियो। इन बीच पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव शांति सागे निपख तरीकाओं करावन सारू सगला जरूरी इंतजाम करिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी आप आपरा हलका रा संवेदनशील और घना संवेदनशील मतदान केंद्रां रो दौरो कर और व्यवस्थावां रो जायजो ले रहा है। मतदान केंद्रां माथे दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदातावां सारूई खास व्यवस्थावां करी जा रही है। इस आगे चुनाव आदर्श आचार संहिता री पालना करावण बाबती निगरानी करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास किसाना कान्यू मांग रहे मुजब डीएपी और यूरिया खाद साफ गोई सागे बांटनू तय करण बाबत कहो है। वह रबी सीजन 2026-27 रे बारा माय आज जयपुर माय राखी जी राज्य स्तर री फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स री मीटिंग माय बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि सियाणु साखा री बुआई री बगत राज्य में खाद री कमी नी वेवनी चाहिए। वह एड़ो तय करण सारू सगला संबंधित अहलकारा और खाद री पूर्ति करण वाली कंपनियां बीच जरूरी तालमेल रखन बाबती कहो। मीटिंग में कृषि और उद्यानिकी विभाग री प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल बतायो कि प्रदेश में 3,73,000 मीट्रिक टन यूरिया और 1,00,000 मीट्रिक टन उबत्तो डीएपी खाद रो भंडार है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और फौज री दक्षिण पश्चिम कमान रा चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत री सदारत माय आज राज्य युद्ध पुस्तक और नागरिक सैन्य समन्वय समिति री मीटिंग राखी जी। इनमाय प्रदेश

0: राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियां, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक मुस्तैदी बनाई राखण सारू नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलां बीच बेहतर तालमेल मथ जोर तियोचियो। मीटिंग माए राज्य युद्ध पुस्तक माए जरूरी बदलाव करण और रक्षा भूमि मामला रा बेगा निपटारा रा बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग पाछे फौज री ओरू ड्रोन जैमर और काउंटर ड्रोन सिस्टम रो दर्शाव करी चियो। मुख्य सचिव सरहदी हलका माए ड्रोन रजरिये वेवन वाली गैर कानूनी हलचल और तस्करी री रोकथाम सारोई सिस्टम ने काम लेवन री राय तीनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज जयपुर में राष्ट्रीय इंडियन हेयर एंड ब्यूटी कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन कीनो। इ मौके वे इंसान ने रूपाला बतावन रा कारोबार बत्तों बत्ता नौजवाना ने जोड़बा सारू कहो। राज्यपाल कहो कहीं रहतेत मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल और उद्यमिता विकास ने बधावो दियो जावण चाहिए। श्री बागड़े सौंदर्य प्रसाधन और सैलून कारोबार माए देशी बाजार री जरूरत र मुजब विकास री संभावनाओं जुड़िया काम करण री जरूरत बताई। वे कहो के सौंदर्य हलको आयुर्वेद री भारत री संस्कृति हुई विकसित फियो है। 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आज जयपुर माए पूरी भी। इरा समापन जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के योग न एक खेल होड़ रात दौर दुनिया माए नुवी पिछाण मिली है। वे कहो के योग शरीर री कसरत सागे भारत री संस्कृति री जूनी अनमोल धरोहर और जीवन रो तरीको ही है।
1: हमारे छोटे से छोटे बच्चे और युवा योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में भी अपना रहे हैं। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और ऋषियों की वह अनमोल धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है। इस प्रतियोगिता में इन बच्चों की एकाग्रता अनुशासन और कौशल इस बात का प्रमाण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी सशक्त हो रही है।
0: ही साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अक्टूबर ने लगाई जावेला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर लगाई जावन वाली ई लोक अदालत माए समझौता लायक दीवानी और फौजदारी मामला ने आपसी सहमतियों निपटाया जावेला। लोक अदालत माए बैंक धन वसूली मोटर दुर्घटना दावा मामला ट्रैफिक चालान मजूरियों जुड़िया झगड़ा टंटा और दूजा मामला रो निपटारो करो जावेला। पहली आ लोक अदालत 12 सितंबर ने लगाई जावनी ही पर प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव रे कारण लोक अदालत 10 अक्टूबर ने लगाई जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 नवी रेलगाड़ियां चलावन री मंजूरी दीनी है। आम आए भुज बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस वाया कोटा सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी और भरतपुर हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस वाया अलवर जयपुर अजमेर आबू रोड और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस वाया अलवर जयपुर अजमेर और आबू रोड गाड़ियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश रा उत्तर पूर्वी राज्यां माए सगणा रा विकास ने बधावो दियो जा रियो है। लाडला 12 साल माए ई हलका माए शांति विकास और संपर्क व्यवस्था माए आमूल चूल बदलाव निजर आवण लग्यो है। पेश है एक रपट।
2: अष्टलक्ष्मी राज्यों यानी पूर्वोत्तर भारत में पिछले 12 सालों में सड़क रेल और हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। वहीं बीते 12 सालों में 12 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे विवादों का समाधान हुआ है। 10,800 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा का रास्ता अपनाया है। उग्रवाद में कमी आने से नागरिक हताहतों की संख्या में भी 86% की दर्ज की गई है जिससे उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट की नीति के माध्यम से पूर्वोत्तर को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन कृषि और बागवानी डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता आर्थिक गलियारे के विकास खेल तथा हस्तशिल्प प्रोत्साहन के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश का प्रमुख विकास इंजन बनाया जा रहा है। समाचार कक्ष से
0: सालेहा गाजी। भारत और वेस्ट इंडीज बीच 5 T20 क्रिकेट मुकाबला री सीरीज रो पहलो मैच आज लखनऊ रा इकाना स्टेडियम माई खेलो जावेला। वो मुकाबलो अब मु थोड़ी देर पछे 7 बजे शुरू हैला। आखिर माई खास समाचार।

चार एकर फेरू सुन ली रहो। केंद्रीय कृत नहना एर मझला कारोबार रा विकास सारू 10,000 करोड़ रुपया रो ग्रोथ फंड ही मंजूर करी चियो। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो। जैसलमेर बीकानेर और सलूम्बर जिला ने कुछ पंचायत समितियां रा चुनाव कार्यक्रम में बदलाव। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास खाद मुहैया करावन री साफ कोई सागर व्यवस्था तय करण रा हुक्म दीना। और 51वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जयपुर में पूरी भी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
7: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
6: वो कैसे?
7: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
6: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
8: किसान वाणी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोग ने महेश भाई को राम राम, और विशाल भाई आपने भी राम राम।
9: हाँ राम राम महेश भाई और सगला किसान भयान घना घना राम राम सा नून प्रणाम।
8: देखो विशाल भाई, आपने जगह किसान भाई ही वह देखो फसल निकाल ली, अनाज दाना ने साफ सुथरों कर लियो, ठीक है, भेड़ो कर लियो और बुरा कमाए भर भी लियो, तो उपज को जो अपना किसान भाई ने चोखो मूल्य मिल जावे, इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी हुए तो कोई दो चार काम की बात बताओ।
9: देखो सा, आपने जो कटाई हूँ पहली जहाँ कटाई जहाँ थे बता रहे हो, कटाई तो कर ही ली और बोरियां भी भर ली, तो अब अपन गए जो दाणन छान और साफ कर और बिन सुकार बोरियां भर मंडी में लेर जानू है, जिसू आपने किसान भैया ने चौक की भी का दाम मिल सी।
8: और जगह गोदाम ही बाकी साफ सफाई करनी है, जैठे अपन ने अपनो अनाज दाना रखनो है, दरार ने बंद करके 50 मिली लीटर जबकि 50 मिली मेला थियान 50 इसी दवाई को 10 लीटर पानी में घोल मिला के दीवारों पर आप छिड़काव कर सका। मसाला फसलों की बात करा तो खलियान का मैं फसल ने आप पॉलीथीन शीट या पक्का फर्श पर सुखा कर बिकी घाई कर दिया।

0: और उपज ने 2 से 3 दिन छाया में सुखाने के बाद में फिर जगह बार आप देख रहे हैं तेज तावड़ो पड़ रही है, तो तेज धूप कमाए सुखावा और बिना पलटता भी रहेगा।
1: देखो सर, धूप में सुखाणु जहाँ कोई भी बीमार जीवाणु विषाणु जो भी हो वे भी नष्ट हो जाए। और देखो साहब, भंडारण के दौरान अपन कीटनाशक का उपयोग अपन बचणु है, और स्वच्छ हवादार और नमी रहित भंडार गृह में अपन भंडारित करनु है। क्योंकि अगर नमी रह वाली तो अपनी जगह मसाला फसला को जगह है वह अपना खराब भी हो सके है। बोरिया के जगह लकड़ी का फंटा है या फिर पॉलीथीन सीट बिछार दीवार 1 फीट दूर पर रखकर बाको भंडारण करना है।
0: बिल्कुल, नमी भी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए और ठीक प्रकार से आप भंडार गृह में अपना जो को अनाज है अपनी फसल है बिन्ने सुरक्षित रख देवा। तो विशाल भाई, जो फिर जब बाजार में चौका भाव हुए मंडी का, आजकल अपना किसान भाई ऑनलाइन भाव भी देख सके, तो भी टाइम अपनी उपज ने किसान भाई बेच दी
1: जी।
0: फल सब्जी की जब बेचान की बात आवे तो कुछ जरूरी बातें हैं कि भी कटाई और तुड़ाई से ठीक पहले अपने भारी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कीट रोग नियंत्रण के लिए जो को जैविक कीटनाशी है भी कोई उपयोग करना चाहिए।
1: और देखो साहब, बाजार मांग के अनुसार ही फल सब्जियां की तुड़ाई पकना से पहला करनी चीज है। और फल सब्जियां ने साफ पानी धोर रंग और आकार के अनुसार ही ग्रेडिंग कर बाजार में अगर भेजी अगर अपना किसान भाई तो बने बाको उचित मूल्य मिलसी है। अपने रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव पहला तैयार फल सब्जियां भी तोड़ लेनु है। एक किसान भैया अपनी अगर बात ध्यान रख ला तो फिर बने उचित मिले जरूर मिल सी।
0: बिल्कुल, फल सब्जी की तुड़ाई पहली कर लेनी चाहिए कि बाबा काल आप स्प्रे कर रहे हैं कुछ छिड़काव कर रहे हैं तो पहली फल सब्जी ने तोड़ लेवा ताकि भी दुष्प्रभाव न हो। और परिवहन की भी बात है कि फल सब्जी ने तुड़ाई कर ली आप ग्रेडिंग कर ली तो टेम से जो कहे बाजार कमाए पहुंचा देवा ताकि आप मैंने चोखा दो पिसा मिल जाए, उपज को सही मूल्य मिल जाए। विशाल भाई, थोड़ा सा आप देखो जागरूक रहवा तो अपनी जो फसल है बिको चोको अपने मूल्य मिल जाए किसान भाई ने।
1: और बात तो सही है। और देखो सा, अब आपने डॉक्टर श्री राम करीर जी से आप जानकारी लेशा रोगा सु बचाव हेतु पशुओं की देखभाल,
0: बहुत ही काम की जानकारी है। तो किसान भाई ने आपा दिलवाया जानकारी
1: लियो सा।
2: कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर विषय विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे ली हुई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीराम करीर, आप पशु चिकित्सा अधिकारी संयुक्त कार्यालय सीकर में पदस्थ हैं और आज हमें बताने वाले हैं पशुओं में रोगों से बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो हमारे घरेलू पशु हैं, दुधारू पशु हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं, उनको रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, क्यों आवश्यक है रोगों से बचा के रखना?
3: जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अपने जो किसान भाई है पशुओं को पालते हैं तो उनको रोगों से बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पशु है वो हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ हमारी आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है।
2: जी जी।
3: जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी हो गई, भेड़ है, इन सब से क्या है, हमें दूध तो मिलता है, साथ में ऊन भी मिलती है, मांस भी मिलता है और भी अनेक टाइप के उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं इनसे। इसलिए पशुओं का स्वस्थ रहना न केवल पशुओं के लिए बल्कि पशुपालक परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है।
2: जी जी।
3: अक्सर क्या होता है कि पशुपालक भाई बीमारी होने के बाद में उपचार पर ध्यान देते हैं, जबकि यदि हम बीमारी से पहले ही बचाव के उपाय कर ले तो पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकता है, उपचार का खर्च भी कम किया जा सकता है और उत्पादन में होने वाली कमी से भी बचा जा सकता है।
2: तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ऐसे ध्यान रखें कि हमारे जो पशु हैं, घरेलू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, वो बीमारी ना पड़े।
3: जी देखिए, जैसे कुछ बातें हैं जिनका पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों को जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। जैसा पहला है कि पशुओं का नियमित रूप से उनको टीकाकरण करवाना चाहिए।
2: जी, जी।
3: दूसरी बात है कि उनका जो आवास है उसका अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। तीसरा है उनको जो उनको खाना दिया जाता है वो संतुलित आहार के रूप में दिया जाना चाहिए। एक है उनके जो बाहरी और आंतरिक जो परजीवी रहते हैं जो कि सामान्यतः हर पशु पर रहते हैं तो उनको बचाव बहुत जरूरी है।
2: जी आपने क्रमवार बताया कि टीकाकरण उनका आवास प्रबंधन और उनको

0: संतुलित आहार, साथ ही परजीवी का भी उसमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक एक कर हम जानना चाहेंगे आपसे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है और किन पशुओं में किस तरह से टीकाकरण होता है।
1: जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। देखिए, बीमारी से जो बचाव है वो उपचार से बेहतर होता है, तो जो टीके पशु को लगाए जाते हैं वो पशु को बीमारियों से बचाव ही करते हैं।
0: जी जी,
1: देखिए इसके लिए क्या है कि गाय भैंस जो होती है पहला टीका हो गया गलगोटू रोग के लिए, जिसको HSV बोलते हैं।
0: जी,
1: ये टीका क्या है, साल में एक बार लगता है और मानसून स्टार्ट होने से जस्ट पहले लगता है।
0: जी,
1: दूसरा है लंगड़ी बुखार, या इसको ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं।
0: जी,
1: ये टीका भी साल में एक बार लगता है और मानसून शुरू होने से पहले लगता है। तीसरी बीमारी है खुरपका और मुंह पका बीमारी, इसको FMD भी बोलते हैं।
0: जी,
1: ये इसका टीका जो है साल में दो बार लगेगा। कब कब लगेगा, एक तो मानसून शुरू होने से पहले लगेगा और एक जब सर्दियां होती है, दिसंबर जनवरी का महीना होता है उस समय लगता है।
0: जी,
1: चौथा रोग है गिल्टी रोग, जिसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं। इसमें इसका टीका साल में एक बार लगता है और ये मानसून जब शुरू होता है उससे पहले लग जाता है।
0: जी,
1: एक पांचवी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, उसके लिए भी पांचवा टीका लगता है, वो जीवन में कभी भी लगवा सकते हैं, एक बार लगता है और किसी भी समय उसको लगवा सकते हैं।
0: जी, तो ये टीकाकरण है, जैसे कुछ टीके ऐसे हैं जो कि साल में दो बार लगाए जाते हैं, कुछ टीके साल में एक बार और कुछ जिंदगी में एक बार लगाए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इनका समय समय पर टीकाकरण जो हम करवाते हैं, यदि कभी किसी कारण से किसी समय में चूक जाते हैं टीका देने से, तो क्या समय निकलने के बाद भी वो टीकाकरण हो सकता है?
1: जी देखिए, किसान भाई को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, यदि यह वह टीका लगवाने से चूक गए हैं तो पशु चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेनी चाहिए।
0: जी,
1: और पशु चिकित्सक उस समय निर्धारित करता है कि वहां पे अभी टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके सही टाइम पे आने पे लगाना चाहिए।
0: जी,
1: तो एक बार पशुपालक भाइयों को पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए।
0: जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पशुओं की साफ सफाई की बात करें या उनके रहने की बात करें, तो उनके आवास के प्रबंधन में क्या विशेष ऐसे ध्यान रखे जाएं जिससे कि वो उन्हें बीमारियां नहीं हो?
1: जी देखिए, कई बार क्या होता है कि पशुपालक भाई जो है पशुओं के आवास व्यवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं, और उचित आवास ना मिलने से पशुओं के उत्पादन में कमी हो जाती है और उसका जो प्रोडक्शन मिलता है वो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। देखिए, अधिक गर्मी होती है या फिर ज्यादा सर्दी होती है तो पशु उस वातावरण से जूझने लग जाता है, जिससे क्या होगा, उसका दूध देने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका सीधा सा आर्थिक नुकसान पशुपालक भाई को ही झेलना पड़ता है।
0: जी, जी।
1: तो अब दूसरा है एक जो पशु का जो ग्रह है या जिसको पशुशाला अपन बोलते हैं, वो क्या है, ऊंचे स्थान पर बनी होनी चाहिए, ताकि वहां से क्या पानी का निकास आसानी से हो जाए, तो वहां गंदगी इकट्ठी नहीं रहेगी और थोड़ी पशु को आरामदायक लगेगा और वहीं पे स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। एक है कि जो पशु की जो छत है या पशुशाला की जो छत है उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए कभी भी। 2.5 मीटर तो मिनिमम रखनी चाहिए, उससे ऊपर ही रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है आसानी से। यदि पशुशाला का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उस पशुशाला में रहने वाले अधिकांश पशु मध चक्र में नहीं आ पाते हैं, और मध चक्र में नहीं आ पाते हैं तो उनका ब्यांत पीरियड या ब्यांत का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है, इससे क्या किसान भाई को नुकसान उठाना पड़ता है। एक है यदि पशुशाला की जो छत है वो पक्की छत बनी हुई है, तो उसके ऊपर क्या है, घास फूस हो गया, पराली हो गई, ये डाल के पानी का छिड़काव कर सकते हैं अपन गर्मी के मौसम में, ताकि क्या है गर्मी से राहत मिल सकती है। एक है पशुशाला जो है उसके आसपास अपन बड़े जो छायादार पेड़ है वो लगा सकते हैं, ताकि पशु को ज्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े।
0: जी जी जी।
1: पशु गृह की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ताकि क्या है कि पूर्वा और पछवा दोनों हवाओं का फायदा पशु आराम से उठा सके। और सर्दी के मौसम में क्या है कि एक दो खिड़की को छोड़ के बाकी सारे खिड़की सारे दरवाजे ये बंद कर देने चाहिए, ताकि पशु को सर्द हवाओं से सामना ना करना पड़े रात के समय में। जो फर्श है वो कठोर और फिसलन रहित होना चाहिए, ताकि क्या हुआ और पानी को सोखने वाला होना चाहिए, ताकि पानी
0: पानी का मतलब निकासी अच्छी होनी चाहिए।
1: हाँ जी
0: पानी
1: पानी, पानी वहाँ पे ना रुके तो अच्छा रहेगा, हाइजीन बनी रहेगी या स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। पशु गृह में लगभग 2.5 से 4 वर्ग मीटर छाया और 7 से 8 वर्ग मीटर खुले स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक जो पशु है वो

0: अपने आराम से घूम फिर सके, आराम से विश्राम कर सके। एक है जो जो खड़े होने के स्थान के पीछे लगभग 35 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नाली होनी चाहिए, ताकि जो पशु का मल मूत्र है वो आसानी से उस नाली के थ्रू बाहर निकल जाए, उसका निकास हो जाए, ताकि वहां पे स्वच्छता का वातावरण बना रहे। दूसरा है पशुओं को नहलाने की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए पशुशाला के अंदर। इससे देखो ऐसा होता है कि दुधारू पशु को यदि ग्रीष्म काल में अपन दो बार नहलाते हैं सुबह और शाम को, तो जो दूध उत्पादन होता है उसमें 5% की बढ़ोतरी देखी गई है।
1: जी, जी।
0: और नहलाने का समय दोपहर में यदि धूप लगा हुआ है पशु को तो बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, उसको सुबह के टाइम में नहलाना चाहिए और शाम को थोड़ा देर शाम तक नहलाना चाहिए। और पशुशाला की जो सफाई है उसका विशेष कर ख्याल रखना चाहिए पशुपालक भाई को या किसान भाई को, क्योंकि संपूर्ण पशुशाला जो पशु आवास है वो उसी में पशु रहता है और उसका समय समय पर जीवाणु रहित करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु है वो वहां पे पनप नहीं पाएंगे, वो पनप नहीं पाएंगे तो पशु का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये आवास प्रबंधन आपने बताया, टीकाकरण आपने बताया कि इनसे बीमारियों से बचा जा सकता है, इसके अलावा पशु को स्वस्थ रखने के लिए आहार भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो पशुओं का आहार संतुलित हो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं या पशुपालक हैं वो क्या कर सकते हैं?
0: जी देखिए, जो पशु का आहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पशु है उसको जितना अपन जैसा आहार देंगे वैसा ही उसका उत्पादन वो हमें प्रोवाइड करेगा या प्रदान करेगा।
1: जी।
0: अच्छा खाना देंगे तो अच्छा दूध का उत्पादन करेगा, अच्छा खाना देंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे तो उससे जो मांस का है वो भी अच्छा उत्पादन देगा।
1: जी।
0: तो देखो, संतुलित आहार से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा पशुपालक भाइयों को कि संतुलित आहार होता क्या है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जिसका 2/3 हिस्सा चारे से बना हो और 1/3 हिस्सा बाटे से मिलकर बना हुआ हो, साथ ही उसके अंदर क्या है पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सर पाउडर हो, विटामिन हो और नमक उसके अंदर उपस्थित हो। अब जो चारा है उसमें भी 2/3 हिस्सा तो सूखे चारे का होना चाहिए और 1/3 चारा गील जो हरा चारा है उसका होना चाहिए। अब जो पशु को जो बाटा देते हैं वो मिश्रित प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि क्या है कपास की खली हो गई, मूंगफली की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, चना चूरी हो गई, मूंग की चूरी हो गई और अरहर की चूरी हो गई। ये जो चूरी है वो क्या करती है, पशु की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। और बाटा जो है वो हमेशा भिगो के ही देना चाहिए। बाटा भिगो के देने से क्या होगा कि जो बाटे की जो स्वादिष्टता है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी जो पशु की पाचन करने की क्षमता है वो भी उससे बढ़ जाती है, वो आसानी से पाचन हो जाता है उस बाटे का। और अपन देखो मोटे तौर पर देखे तो एक जो गाय या भैंस है उसको 1 दिन में 4 किलो सूखा चारा दिया जाना चाहिए, 1 किलो बाट दिया जाना चाहिए और 20 किलो हरा चारा, साथ में क्या 50 ग्राम खनिज मिश्रण पाउडर दे दे, 30 ग्राम नमक और 40 से 50 लीटर स्वच्छ ताजा पानी उसको 1 दिन में दिया जाना चाहिए। और यदि वो पशु दूधारू है मतलब वो दूध दे रहा है इस समय, तो क्या है कि जो गाय है उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बाटा अतिरिक्त देना चाहिए और भैंस है उसको 2 किलो दूध पर 1 किलो बाटा अतिरिक्त देना चाहिए। अब देखो यदि अच्छा या अच्छा खाना दिया जाता है पशु को, जो नवजात है यदि 6 माह की बछड़ी है उसको उच्च गुणवत्ता का जो संतुलित आहार दिया जाए तो वो क्या है कि 2 से 2.5 वर्ष तक अपनी पूर्ण उसका विकास हो जाता है, उसके जो प्रजनन अंग है वो भी अच्छे से विकसित हो जाते हैं और वो गर्भाधारण करने के सक्षम बन जाती है। इससे क्या होता है कि पशुपालक भाई को सीधा सीधा नुकसान न होके फायदा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, संतुलित आहार और आवास प्रबंधन के साथ में कई बार हम देखते हैं कि गाय या भैंस है या हमारी बकरियां हैं जिन्हें हम रखते हैं, उनके शरीर पर छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं, ये जो पिस्सू हो जाते हैं या चींचड़े जिनको हम कहते हैं, तो ये जो परजीवी हैं जो शरीर के अंदर भी होते हैं और शरीर के बाहर भी होते हैं, तो ये इन परजीवी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
0: जी देखिए, पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि परजीवी क्या है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने खाने या पानी के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो खुद अपना खाना पानी नहीं बनाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब है कि जो पशुओं के शरीर के बाहरी शरीर पर चिपके हुए रहते हैं या त्वचा पर चिपके हुए रहते हैं और वहां से क्या करते हैं खून चूसते हैं उनका, और खून चूसते चूसते पशुओं को बिल्कुल कमजोर बना देते हैं, जो पशुओं की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं वो भी कमजोर कर देते हैं।

0: तथा जैसे प्रतिरक्षा तंत्र भी उनका कमजोर हो गया और उसका जो उत्पादन है वो डेफिनेटली कमजोर कम होना ही होना है, क्योंकि यदि वो परजीवी उसका सारा का सारा खून चूस रहे हैं, उससे जो भी पोषण जा रहा है अंदर वो परजीवी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाना शरीर उसके मतलब वो जो है पोषण है वो पशु को जाना चाहिए, लेकिन पशु नहीं ले पाता उसका फायदा, उसका फायदा वो परजीवी उठा लेते हैं।
1: जी, जी।
0: तो जे अब दूसरा मैंने बताया कि अंतः परजीवी क्या है। अंतः परजीवी वो होते हैं जो शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, जैसे पेट के कीड़े हो गए या फिर थिलेरियोसिस बीमारी होती है उसके जो उत्तरदायी जीव है, बबेशियोसिस बीमारी है उसके लिए उत्तरदायी जीव है, या फिर अपन यूं कहें तीबरसा एक बीमारी होती है ऊँटों में, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीव है वो अंतः परजीवी होते हैं।
1: जी।
0: अब ये क्या करते हैं, पशु पोषण का उपयोग खुद कर लेते हैं। जो अपन ने जो संतुलित आहार की अभी बात की है, वो पेट के अंदर यदि वो कीड़े हैं तो जो संतुलित आहार जाएगा वो पशु के पास ना पहुंच के, पशु के शरीर में न जाके
1: पोषक तत्व उसमें से परजीवी,
0: वो पोषक तत्व सारे के सारे वो परजीवी ले लेते हैं। तो अपन को लगता है अपन खाना भी बढ़िया दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है।

0: होते हैं
1: जी।
0: अब ये क्या करते हैं, पशु पोषण का उपयोग खुद कर लेते हैं। जो अपन ने जो संतुलित आहार की अभी बात की है, वो पेट के अंदर यदि वो कीड़े हैं तो जो संतुलित आहार जाएगा वो पशु के पास ना पहुंच के, पशु के शरीर में न जाके,
1: पोषक तत्व उसमें से परजीवी,
0: वो पोषक तत्व सारे के सारे वो परजीवी ले लेते हैं। तो अपन को लगता है अपन खाना भी बढ़िया दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या है, वो परजीवी जीव उत्तरदायी है, तो उन परजीवी जीवों को अपने को उनसे हटाना ही पड़ेगा
1: जी,
0: अच्छा
1: जी,
0: उत्पादन लेने के
1: जी,
0: लिए
1: जी।
0: तो अंतः परजीवी से छुटकारा पाने के लिए क्या होगा, प्रत्येक पशु को डीवर्मिंग करवानी चाहिए। डीवर्मिंग का मतलब है पेट के कीड़े की दवाई होती है, तो पेट के कीड़ों की दवाई है वो हर 3 महीने में जो वयस्क पशु उसको देनी चाहिए, ताकि क्या है उसके पेट के सभी कीड़े बाहर निकल जाए पेट से, और जो भी जो अपन जो पोषण दे उसको, उसका सारा का सारा फायदा पशु को, पशु ले सके
1: जी। और बाह्य परजीवियों के लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: देखिए, बाह्य जो परजीवी है उनसे बचाव के लिए पशु चिकित्सक से हमेशा संपर्क करना चाहिए, और कुछ दवाइयां जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है, साइपरमेथ्रिन हो गई, डेल्टा मेथ्रिन हो गई, इनका क्या है, एक पानी के साथ घोल बनता है और उस घोल को पूरे शरीर के ऊपर छिड़का जाता है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो घोल अपन ने लगाया है वो एक तरीके का जहर होता है, तो वो जानवर चाट ना पाए, तो 24 घंटे तक जानवर की निगरानी रखनी होती है, उसके बाद में उसको साफ पानी से जानवर को नहला दिया जाता है।
1: जी जी। अच्छा, अब पशुओं में हम रोगों से बचाव की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर हम कहें तो नवजात जो पशु हैं या छोटे पशु हैं वो ज्यादा बीमारी से ग्रसित होने वाले होते हैं, तो नवजात पशुओं का कैसे ध्यान रखें, कैसे उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जो नवजात बछड़ा है वो नया नया एकदम वातावरण में आता है, तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ब्याने के बाद में बछड़े या बछड़ी को जितना जल्दी हो सकता है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसको देसी भाषा में खीस बोलते हैं या फिर कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। खीस में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक कारक होते हैं जो कि बछड़े की आंतों से शुरुआती 48 घंटे तक ही अवशोषित हो पाते हैं, उसके बाद में बहुत कम मात्रा में अवशोषित होते हैं, क्योंकि नवजात बछड़े या बछड़ियों के जन्म के 48 घंटे बाद में क्या है कि आंतों के जो छेद है या जो कोशिकाएं हैं जिनके बीच में छेद होते हैं वो भर जाते हैं, तो वो वहां पे पहुंच नहीं पाते शरीर के अंदर। इसलिए क्या है कि 48 घंटे शुरू के जो 24 घंटे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खीस उसमें बहुत मात्रा में खीस पिलाना चाहिए। अब जो खीस है वो कैसे पिलाए, कितना पिलाए, उसकी मात्रा के लिए जो गाय या भैंस के जो बछड़े हैं उनको शरीर के वजन के 10वें हिस्से के बराबर एक दिन में खीस पिलाना चाहिए
1: जी।
0: और जो बकरी है, बकरी या जो भेड़ का बच्चा है उसको अपने वजन के 6वें हिस्से के बराबर खीस पिलाना चाहिए
1: जी,
0: ताकि उसका क्या स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो सके
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने आज पशुओं में रोगों से बचाव के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ। आपसे चाहते हैं इजाजत, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
7: विशाल भाई
8: जी,
7: देखो डॉक्टर श्रीराम करीर बहुत चौकी जानकारी अपने किसान भाई ने दी कि भी रोगों से बचाव हेतु पशु

0: की देखभाल चूंकि जानकारी ही और किसान भाई चूंकि इसी जानकारी को लाभ जरूर लेऊंगा अपना।
1: अरे अब देखो जानकारी के साथ अब एक सुनशा चौको सो गीत
0: सुना दे सर।

0: विशाल भाई, परवीन मिर्जा की आवाज में लोगी तो आप बहुत चोको सुनाए उड़ उड़ रहे मारा काड़ा कागला। और देखो कागला की बात करता करता अब घड़ी की सुइयां इशारे कर दिया है कि भाई किसान वाणी कार्यक्रम को समय पूरा हो चाले है। तो महेश भाई ने और
1: विशाल भाई ने दिया आज्ञा
0: करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म आ अब लौट चले के इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम शावन का।

अगला गीत सुनवाते हैं आपको अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाज में फिल्म आदमी खिलौना है से। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: किशोर कुमार की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म है बिन फेरे हम तेरे, गीतकार हैं इंदीवर और संगीत है उषा खन्ना का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं सुरेश वड़ेकर और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म बोल राधा बोल से। गीतकार हैं समीर और संगीत है आनंद मिलिंद का।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में गाए हुए फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम सुनेंगे हनुमान सहाय शर्मा और साथियों की आवाज़ में गाए हुए लोकगीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: हनुमान सहाय शर्मा और साथियों की आवाज में गाए हुए इन्हीं लोकगीतों के साथ लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज

0: के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मधुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी

0: उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
1: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख

0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए अब सुनिए ज्वेल से फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजनू सुल्तानपुरी के हैं बोल और एसडी बर्मन की है तर्ज। फिल्म का नाम बता चुका हूँ, ज्वेल थीफ।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से गाया मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: तो याद आ गया होगा दोस्तों आपको, ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना पर।
1: बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो।

0: बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर में, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। विभाजन के बाद विनोद खन्ना का परिवार आ गया मुंबई। यहाँ दिल्ली, मुंबई और देवलाली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वैसे ये आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि मुंबई के सिडनम कॉलेज से विनोद खन्ना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और इस तरह पहली पहली बार मंच पर उनकी एंट्री हुई।
1: क्या बदतमीजी है?
2: सुनो भाइयों, सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है।
3: तो भी हमें क्या करना चाहिए?
2: जो पंचों की राय,
3: तूने लड़की को देखा?
2: देखा,
3: लड़की पसंद है?
0: हालांकि विनोद खन्ना को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के तो विनोद दीवाने रहे हैं। बाद में किशोरावस्था में पहुंचकर उन्होंने कुश्ती यानी रेसलिंग का भी चस्का अपने आप में अपना लिया। हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक विनोद खन्ना की बलिष्ठ अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया।
4: दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती।

0: विनोद खन्ना के रौबदार अभिनय का ये अंदाज भी आपने देखा और सुना होगा दोस्तों।
1: यहाँ एंथनी कौन है?
2: एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। ओ बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे।
1: मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है।
2: ऐसा क्या?
3: जरूर देखेंगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन।
1: जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना?
2: हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगे लाया, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ।
0: माना माना दोस्तों, अमिताभ का जमाना था, लेकिन विनोद खन्ना में भी वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो एक सुपर स्टारडम के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब भी बिग बी और विनोद खन्ना साथ साथ आए, टक्कर बराबर की रही।

0: 1974 हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को।
1: मैं हूं लहर और साहिब।

1978 में अपने करियर के चरम पर रहते हुए भी विनोद खन्ना एक खालीपन महसूस कर रहे थे, उससे जूझ रहे थे, अपने भीतर कुछ खोज रहे थे। इसी खोजबीन में विनोद ने शरण ली अध्यात्म की और कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में चले गए। 1985 में यानी 1985 में विनोद खन्ना की हुई वापसी, फिल्मों में लौटे और फिर शुरू किया एक्टिंग का सिलसिला। साफ और राज सिप्पी ने मौका दिया फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी दौर की फिल्में हैं ये जिनके जरिए

आगे चलकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को दयावान में बनाया एक डॉन जिसने सभी को अचंभित कर दिया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी अभिनेता हैं और अपने अपने मुताबिक काम में मसरूफ हैं। हालांकि अक्षय खन्ना को विनोद खन्ना ने लॉन्च किया था, फिल्म थी हिमालय पुत्र।

लेकिन एक बात रही कि उन्होंने अब चुनिंदा फिल्मों में काम करने की ठान ली। आपने उन्हें वांटेड और फिल्म दबंग में सलमान खान के पिता की भूमिका में जरूर देखा होगा।

चांद के पार चलो। कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहाँ कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफ़र आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यम में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें MSME बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का MSME ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक

0: पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होगी। सवेरे 5:55 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।